फ्रेंड्स, मैं डेविड ब्राउन आज इस ख्याल की खुशी से फूला नहीं समा रहा कि मैं एक ऐसे अजीम फनकार, महान कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट को आपसे मिलाने का काम कर रहा हूं। देयर ही इज, कम सिंग एंड कॉन्कर।